नया वर्ष को अवसर में मेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद कर सकिन्छ।

लड़की हॉट नहीं बहुत ही हॉट है, आग पकड़ती है लड़कों की मौत है, शॉट लगाती है तो खाती है, दिखती नहीं है, मेरा बहुत है।